जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब और सलाम। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है। सुनने वालों आज भी फिर बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है, शुभ सुबह जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए ये प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो एस बी एस के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो सियू का नाम हरिहरन के आवास में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। हमारी सभी सुनने वालों को एक बार फिर से वेलकम स्वागत किया जा रहा है जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो एसबीएस का। और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले भजन यात्रा प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं एक भजन जो पेश किया जा रहा है गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में। जरूर आप सुनते ही रहना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03226666 तार की नंबर पर स्टूडियो की ओर हमेशा आप तार कर सकते हैं। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं गुरमीत और मीना की आवाज में सुंदर भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। एल्बम का नाम है हर हर महादेव, पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये सुंदर सा भजन।

सुंदर भजन गुरमीत और मीना की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सुनने वालों चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में एक सुंदर सा भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

मोहम्मद रफी की आवाज में सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। चले प्रोग्राम में गणेंद्र जी की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है। आज की प्रोग्राम में जरूर सुनते ही रहना।

की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए अबकी बार एक और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए रेडियो SBS के जरिए।

SBS के जरिए सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। आसरा उम्मीद है सुनकर और बेहद पसंद किया है। चले अब की बार मीका सुक्खू जी की आवाज में एक सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

आवाज पेश की गई है। चले प्रोग्राम में आखिरी भजन पेश किया जा रहा है और आखिरी भजन होगा आरती भजन, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से भी, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी जो आज नौकरी करने वाले है, काम करने वाले है, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

जनाब उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार नीरज श्रीधर एंड सुनिधि चौहान के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: Yes, we have keys.
1: These are the boys.
0: ये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की आवाज में गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गए सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में शान और सुनिधि चौहान होगा प्रोग्राम में।

और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई। कुमार सानू और अनुराधा पोटवाल प्रोग्राम में अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले कुमार सानू जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

अनु जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आश्रो मीठे गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। अतीफ असलम की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना अतीफ असलम की आवाज में आपने सुना और बेहद पसंद किया है। विनोद राठौर एंड साधना सरगम प्रोग्राम में

सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में गाना सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

पे बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है, 18 तारीख जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अरविंद। आज का मौसम खूबसूरत सुहाना मौसम है, गर्मी सा मौसम बस होने वाले है, हो सकता है शाम की वक्त में कहीं कहीं जोर तोर से बारिश भी होगा, लेकिन सारे हिस्सा में झूरा मौसम धूप का मौसम होने वाले है और गर्मी सा मौसम। यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम हर सुबह 9 बजे से लेकर के और तकरीबन 11 बजे तक आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। तो चले आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। तो यहां से प्रोग्राम में पहला पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है, जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और चलिए आज की इस प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अनवर हुसैन एन चंद्रानी मुखर्जी की आवाज में ये गाना।

से वाबे रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड की जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि रोजाना की तरह आज भी बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं। जब भी ये दिल उदास होता है, मोहम्मद रफी एंड शारदा।

0: ट्रॉफी और शारदा के आवास में ये गाना पेश की गई है, जब ही ये दिल उदास होता है। तो फिल्म सीमा फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए।
1: इजाजत है
2: इरशाद।

उसमें ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब आपको ले चलते हैं गाना जो किशोर कुमार की आवाज में पेश किया जा रहा है। किशोर कुमार प्रोग्राम में

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मैं हूं आपका खिदमतगुजार अभी नव रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं संगीत भरी स्टेशन जो शेरुत्रेख से पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मोहम्मद रफी एंड लता मंगेशकर।

0: कह दो, हाँ कह दो, अरे हाँ कह दो।
1: एक बात कह दूँ,
0: कह दो,
1: दिल की बात कह दूँ,
0: हाँ कह दो,
1: दिल

रेडियो SBS की जरिए ये गाना बस पेश की गई पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म कठपुतली, फिल्म कठपुतली का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। सुनने वालों आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11 और बाकी हर एक इंफॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर 03-22-65-65-60 है और इस टेलीफोन नंबर पर तार का नंबर पर 24 घंटा लगातार आप तार कर सकते हैं। 24 पर्दा अखबार एक बार होता है आपकी सभी और सभी कामों काज के लिए। आज के प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे गाना जो पेश किया जा रहा है यशुदास की आवाज में। यशुदास की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

यशुदास की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में यशुदास के बाद गीता दत्त की आवाज में फिल्म बाजी का गीत पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना ये खूबसूरत गाना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए। बहुत सी सुनने वालों बस रेडियो SBS का ये प्रोग्राम सालों से बस सुनते हैं, जो खास तौर पर शहर उत्रेख हॉलैंड का सबसे खूबसूरत शहर से बस पेश किया जा रहा है। फनाउट हट फन नीदरलैंड, फनाउट मिड नीदरलैंड, हॉलैंड के बीच से ये आवाज निकलते हैं और वो भी सालों से सुनने वालों ये रेडियो स्टेशन का प्रोग्राम को सुनते हैं। रेडियो SBS संगीत भरी स्टेशन का प्रोग्राम। हम आपको ले चलेंगे एक गाना की ओर मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है गूंज उठी सहनाई। जीवन में पिया तेरा साथ रहे,

साथ रहे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश की गई, गूंज उठी सहनाई, फिल्म का नाम और उसी फिल्म का ये काफी प्यार भरी गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सिनेवालो स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 032-62-66-11। इसी तार की नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। चले मोहम्मद रफी की ओर, मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। शेरों की बादशाह और संगीत का फरिश्ता मरहूम मोहम्मद रफी।

बदबशरी मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई फिल्म का नाम था आरती। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में। चलिए फिल्म हम किसी से कम नहीं उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी और सुषमा सरस्ता की आवाज में।

फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना, हर एक को खबर कीजिए रेडियो SBS के बारे में।

खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार आशा भोसले एंड मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 032-62-66-11 महेंद्र कपूर प्रोग्राम में।

SBS के जरिए गाना बस्तीश की गई महेंद्र कपूर की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में किशोर एन लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो SBS के जरिए वही गाने पेश किया जा रहा है जो आप सुनना चाहेंगे, जो आप पसंद करते हैं। मुकेश और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। फिल्म पत्थर के सनम, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और वो भी शहर यूट्रेख्ट से। तो चले प्रोग्राम में अब की बार गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, हम आपको ले चलते हैं एक और काफी खूबसूरत गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और वो भी लता मंगेशकर। लता जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में एडो फिल्म नाइट इन लंदन।
1: Waar jij van houdt. Dit is Radio SBS.

मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था नाइट इन लंदन। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में चले प्रोग्राम में आशा भोसले एंड एड दे बर्बन यानी कि राहुल देव बर्बन की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। द नाइटिंगेल ऑफ एशिया आशा भोसले और एड दे बर्बन राहुल देव बर्बन की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है पिया तू अब तो आजा।

रेडियो SBS के जरिए जाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा भोसले और एर डे बर्डमन की आवाज में। चलिए प्रोग्राम में फिल्म जिद्दी, उसी फिल्म का एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आपको खबर किया जा रहा है हर एक काम काज के लिए। रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325656560, इसी तारकी नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर हमेशा आप तार कर सकते हैं। हम सभी 24 घंटे आप सभी के लिए बराबर बार होते हैं हर एक कामकाज के लिए, जब भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे। तो चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और आशा जी की ओर, फिल्म का नाम जिद्दी।

बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में उदित नारायण एनालका की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, शादी से पहले फिल्म का नाम, एक फिल्म जो 2006 में रिलीज किया गया है।

में फिल्म का नाम शादी से पहले, शादी से पहले फिल्म का नाम, और उसी फिल्म से ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई तेरे बिना रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है वेबसाइट radio.sbs.nl। कुमार सानू एन सुनिधि चौहान प्रोग्राम में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है कुमार सानू और सुनिधि चौहान की आवाज में।

ही चौहान की आवाज में ये गाना पेश की गई, शब्द फिल्म का नाम और उसी फिल्म से ये गाना भी आपने सुना। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322666611। कुणाल गांजावाला एंड सुनिधि चौहान, शकलाका बूम बूम फिल्म का नाम।

कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना बसपुर गांबे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। आज के प्रोग्राम में जरूर और जरूर सुनते ही रहना सरो उम्मीद है गाना आप सभी सुनेंगे और बेहद पसंद करेंगे। जावेद अली और साथियों की आवाज में ये गाना

पेश की गए जबेद अली और इंदु पांडे की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। शौर्या फिल्म का नाम अबकी बार अदनान सामियन सुनिधि चौहान की आवाज में आज की प्रोग्राम में ये गाना पेश किया जाए।

सौरिया गाना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना रेडियो SBS का जो पेश किया जा रहा है संगीत भरी स्टेशन हॉलैंडी से यूट्रेख्ट शहर से। ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। शिखर फिल्म का नाम 2004 में ये फिल्म रिलीज किया गया है। ये गाना उसी फिल्म का उदित नारायण एंड अलका।

Udit Narayan और अलका की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार अनुराधा पोटवाल और उदित नारायण की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

अलका की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सिर्फ अलोकी सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। चलिए फिल्म आवारापन जुजाना की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है। अब आप बोली चलते हैं फिल्म का नाम आवारापन।

इसकी गए रेडियो वेस्ट पे इसकी जरिए अभी आपने सुना। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अभी और रेडियो वेस्ट पे इसका प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 032-65-65-60। अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में आपके बारे गाना पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है इतनी सी बात, इतनी सी बात गाना का बोल।

तेरे मित्र की आवाज में। रेडियो SBS के जरिए ये गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गए।

सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए अब की बार तुलसी कुमार NKK की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। तुलसी कुमार NKK प्रोग्राम में

तुलसी कुमार एन के आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई रेडी फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं कुमार सानू के आवास में गाना, और अब की बार फिल्म का नाम होगा इंडियन बाबू।

का गीत उस प्रोग्राम में पेश की गए। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है सभी कामों का आज के लिए। टेलीफोन नंबर है 0325656560। सोनू निगम एंड अलका।

पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका की आवाज में ये गाना

रेडियो वेस में इसके जरिए शंकर महादेवन और साथियों की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। कुमार सानू एन अलका की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का खास प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल।

आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चले मिलकर अरिजीत सिंह की आवाज

रेडियो SBS के जरिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आज और उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू जी की आवाज़ में।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा। उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चलिए अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

उसी फिल्म का ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार लता मंगेशकर की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। चले एक गाना बस किशोर कुमार और साथियों की आवाज में पेश किया जा रहा है, एड फिल्म जानबाज।

रेडियो SBS के जरिए हम फिल्म जानबाज उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा और उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए गाना जो मोहम्मद रफी की आवाज में पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई। जब जब फूल खिले फिल्म का नाम, उसी फिल्म से ये गाना अभी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का नाम।

रेडियो SBS के जरिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो पेश किया जा रहा है सुमन कल्याणपुर की आवाज में।

0: रेडियो SBS के जरिए सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं।
1: जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं के

दम है, सीधे साधे भोले भाले लोगों को सताना तेरा काम है, मुजरिम तेरा नाम है, तुझ पे ये इल्जाम है, सीधे साधे

जो भूत होते हैं बातों से को मानते वो नहीं, कुछ जानते वो नहीं, पहचानते वो नहीं। लातों के जो भूत होते हैं बातों से को मानते वो नहीं। आ गई वो घड़ी बोल के पड़ी, आ मैं जरा तेरी बाहे मरोड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या, बोल जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं कि छोड़ू, तेरी टांगे तोड़ू, बता तेरी मर्जी है।

0: पैसा मिला कैसा मजा आया, मारूं कि छोड़ू तेरी टांगे तोड़ू बता तेरी मर्जी है क्या, बोल जैसे को तैसा मिला कैसा मजा आया, मारूं कि छोड़ू तेरी टांगे तोड़ू बता तेरी मर्जी है क्या।
1: रेडियो SBS की सर ये गाना पेश की गई किशोर कुमार की आवाज में, जैसे को तैसा फिल्म का नाम। चलिए मोहम्मद रफी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले किशोर एन लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

या तो मंगेश कर और किशोर कुमार के आवाज में ये गाना पेश की गई जानवर और इंसान फिल्म का नाम गाना जो आज की इस प्रोग्राम में पेश हुआ है। एक गीत मुकेश और लता मंगेशकर के आवाज

रेडियो वेस्ट में यस की जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में मुकेश और लता जी की आवाज में। चलिए प्रोग्राम में हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आर जे अंशुलि करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशुलि करमलाल, दी फहार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। वेल रिएक्शन कैन आल्टाइड सर्फ मना द वेबसाइट www.radio.sbs.nl।

0: लंका फूंक दिए जाकर गढ़ लंका, हाँ लंका फूंक दिए हनुमत ने लंका।
1: माता मैं आज्ञा चाहता हूँ, श्री रामचंद्र जी के लिए कोई संदेशा हो तो आदेश हो माता।

हमारी अधूरी कहानी फिल्म से आपने सुना ये बेहतरीन गाना, हमारी अधूरी कहानी अरिजीत सिंह की आवाज में। और अब आप सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में बाबुल से, कह रहा है दिल दीवाना।

बिंदिया चमके चूरी खन के लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तुम्हारे, इस गजोंगों दूर सोनू निगम एंड अलका याचिक एंड कॉम टू द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे। Uit de film Bajrangi Bhaijaan is het volgend liedje via Radio SBS. In het programma Gieton Killeher hoort u dan Elele, elele, elele, elele, elele, tel beta selfie, lele, re.

0: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का दिल दीवाना लगता है, kwam uit de prachtige film Dhadkan van Akshay Kumar, Shilpa Shetty en Sunil Shetty. Dit liedje is gezongen door Nusrat Fateh Ali Khan. Gaan we dan verder met Tequila uit de film Bala.
1: Bala bhaiya ki subah ki khushi mein pesh hai Sony Band ki khaas peshkash. Suniye.

जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले।

फिल्म यादें से आपने सुना उदित नारायण और आशा भोसले की आवाज में जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले। और अब आप सुनिए 14 फेरे से है तू।

टाइटल सॉन्ग फिल्म दीवाने का आपने सुना कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याचिक की आवाज में। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म एहसास से। तुमसे मिलकर हुआ है एहसास एक नया नया।

आप हमारी जान बन गए। अज़ीज़ कौर और मिथुन की आवाज़ में आपने सुना खुदा हाफिज़ से। अब आप सुनिए कृष्णा कोतिश से। शान और सुनिधि चौहान की आवाज़ में आप सुनिए बिंदास आहा।

मैं भी सरफिरा तू भी सरफिरी इस गजंग दौर सिद्धार्थ माधव नीति मोहन एंड करण मेहता एंड कम द फिल्म कट्टी पट्टी एंड द फिल्म कभी अलविदा ना कहना कम द टाइटल सॉन्ग गजंग दौर अलका याचिक एंड सोनू निगम।

जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक तू ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता था। इस वसंग दुर्कुमार सानू है बस आउट ऑफ फिल्म दिलवाले। हाँ वो फेरदर मैथ बजरंगी भाईजान। वसंग दूर जावेद अली कौम तू जो मिला।

ए मेरी जोहर जवी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवां। तुझ पे कुर्बान मेरी जान फिल्म वक्त से आपने सुना मन्ना दे की आवाज में और रेडियो SBS FM के प्रोग्राम में आप सुनिए अगला गाना। के की आवाज में आप सुनिए फिल्म गैंगस्टर से भीगी भीगी सी है रातें।

तमाशा से आपने सुना अरिजीत सिंह और अलका याचिक की आवाज में अगर तुम साथ हो। और अब आप सुनिए अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में। कमाल खान और अलका याचिक की आवाज में आप सुनिए तुमको ना भूल पाएंगे से क्या हुआ तुझे।

दिल में सनम की सूरत, आँखों में रोशनी है, मेरी खुदा मुझे तो एक और जिंदगी दे। इस खुशाद और कुमार सानू एंड अलका याचने के कमाई द फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई। En uit de film Ruhi komt gezongen door Sachin Jigar, Aziz Kaur en Divya Kumar. Panghat.

0: नजर से।
1: मुकेश जी और लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना फिल्म अनारी से दिल की नजर से, और अब आप सुनिए पुरवैया शंकर माधवन की आवाज में फिल्म तूफान से।

कुणाल गांजावाला की आवाज में आपने सुना फिल्म क्योंकि से। दिल कह रहा है तेरी धड़कनों को छू लूं, तेरा जिस्म ओढ़ लूं। और अब आप सुनिए नेहा कक्कर, मनोज म्यूजिक और हर्बी की आवाज में फिल्म गुड न्यूज से, लाल घाघरा।